0: भी, मुर्गा भी।
1: मौसम कैसा है?
2: We have a meditation room complete with sound system.
3: अच्छा, ज्यादा अच्छा और मछली?
0: सार्डिन?
2: Yes, of course.